स्यात् श्यामनि भवेदहर वक्निनयनं स्यात् पङ्कज वराभ यजबाक्षबलयुक्तम् अङ्गकिमभूषण विचित्रवसनं स्यात् तुङ्गमगुणोत्पल मनोन्मणिस्वरूपम् ॐ श्रियै नमः ॐ उमायै नमः ॐ पार्वत्यै नमः ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ॐ राज्यदायिन्यै नमः ॐ श्रीमहादुर्गाय नमः ॐ श्रीमहालक्ष्मी नमो नमः ॐ श्रीमूलाधारगणपतये नमो नमः ॐकदण्डाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्दि प्रचोदयात् ॐ श्रीमूषिकाय नमो नमः पुष्पैर्भुजैयामि बलिपूडाय

भगिने नमो वयं वैष्णवनाय भूमवे समेधमान्धमधमाय मह्यं स्वामिनेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमो